जीवनयाता शीतलता दिमा जीवनयाता जीवित यैमा अलिना प छेगु जीवनया पला पला न्हेपकिमा किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यईमा अलिना पं छेगु जीवन या पला पला नहिपुकीमा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवनयाता शीतलता जीवनयाता जीवित यही अलिना पेगु जीवन या पला पला नहीं फुकी किप्स एफएम छेगु जीवन या सदाएम पासा किप्स 98.3 एफएम।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: नेपाल भाषा या न्याय बुझेचौं मेत
1: सुथैया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: हेलो
1: मन्जु, तिमीले तिमीलाई साँच्चीकै माया गर्छौ भने चिट्टी कानुनी रूपमा आफ्नो बनाइहाल है। आज भोलि अर्कै केटीसँग नजिकै छ, बेलैमा विचार गर है मन्जु, बेलैमा।

0: हो गिफ्ट्स 98.3 एफएम तपाई सँगको सहयात्रा
1: गिफ्ट्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल।

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माई वर्ल्ड लिंक एन्ड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयर एभर यु आर।

0: 妈妈，爸爸，妈妈，
1: 宝贝有泪，
2: 真的有人教
3: ，Tips 98.3 FM。
4: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब
5: This romantic Hindi song This romantic Hindi song
6: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल
5: This romantic Hindi songs Every Sunday 9 PM Tuesday 6 PM
7: पहला नशा पहला खुमार
5: Station GIFT FM 98.3 MHz

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: एक घंटा तीनोटा मूवीज का सुपरहिट गीत हरू
1: थ्री इन वन
2: एवरी सैटरडे 9 AM एंड थर्सडे 6 PM
3: भैगो नी जाऊं छोडेर जाने लाई भैगो नी जाऊं तर्केर जाने
2: कीप्स अनप्लग्ड
3: लास्ट मोडमा नहीं
2: नेपाली आर्टिस्ट सिंगर्सहरूका अनप्लग्ड गीतहरू सुन्न नछुट्याउनुहोला हरेक आइतबार मध्याह्न 12 बजे र शनिबार दिउँसो 4 बजे।